0: उस्ताद बिस्मिल्ला खां आणि सहकाऱ्यांनी सनईवर वाजवलेली गुजरी तोडी रागातली धून आपण ऐकलीत. हे आहे आकाशवाणी नेटवर्क आणि आपण ऐकत आहात पुणे विविध भारती 101 FM, पुण्यातलं पहिलं लोकप्रिय FM चॅनल. सकाळचे 6 वाजत आहेत. यानंतर काही क्षणातच हिंदीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून देण्यात येतील, आम्ही त्या सहक्षेपित करू. त्यानंतर 6:05 राष्ट्रीय वाहिनीवरून सहक्षेपी करू वंदनवार. आता 6 हिंदीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई.
2: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे. कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया. राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे. रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है. सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी. साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में पहले सुनिए आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, संसार को सुंदर बनाने के दो ही औजार हैं, शब्द और विचार। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ 6:35 से। आज सुनिए भाग 181। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुनवाई जाएंगी। आज सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर, तबला यति भागवत, हारमोनियम ज्ञानेश्वर सोनवनी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। 7 बजे गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8 बजे समाचार प्रभात होगा और 8:15 पर आप सुनेंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 2:00 से। चित्रलोक कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 से। पर सुबह और रात 9:30 पर सुनिए आज के फनकार, जो केंद्रित है गीतकार संगीतकार प्रेम धवन पर। 10 बजे पिटारा में

आज के मेहमान कार्यक्रम होगा और 11 बजे से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे समाचार सुनिएगा, 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर आप समाचार सुनेंगे और 2:30 से गुनगुनाइए विविध भारती के साथ सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम होगा और 4 सुनिए हेलो फरमाइश। 5:30 पर कार्यक्रम सुनिए तराने नए पुराने। 6 हिंदी में समाचार और 6:35 से सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसमिलिय कार्यक्रम में सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रिका की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी मंगल में जंगल। लेखक हैं राजकुमार दाग और निर्देशक हैं दीनानाथ। 8:15 पर कार्यक्रम सुनिए चित्रलोक। नौ बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए और रात 10 बजे सुनिए छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। झरोखा में आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

सुप्रभात। बुले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गीतकार संगीतकार प्रेम धवन की याद का दिन है, तो आज के बुले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनके लिखे और संगीतबद्ध किए कुछ गाने सुनवा रहे हैं।

शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के बंगला उपन्यास बिराज बहू पर इसी नाम से फिल्म बनी बिराज बहू का ये गीत अभी आपने सुना। श्यामल मित्रा और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सलिल चौधरी का संगीत था और प्रेम धवन के बोल। समय के बदलाव को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है इस गीत में। गाती बहारों के संग आओ गीत गा लें। अब सुनते हैं ये गाना।

हृदय की पीड़ा हो या मन के मखमली एहसास, प्रेम धवन की कलम का जादू बांध लेता है। सुनते हैं एक था अली बाबा फिल्म का ये गाना। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में प्रेम धवन के बोल हैं, हंसराज बहल का संगीत।

0: जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन.
3: हर रोज रात 10 बजे सुनिए छाया गीत. इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट.
4: दररोज रात्री 11 ते 11:30 या वेळेत जरूर ऐका जुन्या सुमधुर हिंदी चित्रपट गीतांचा आपला आवडता कार्यक्रम डॉक्टर परीक्षित फेगडे बेला के फूल. प्रायोजक डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक, सांधेदुखी आणि गुडघेदुखीवर रामबाण उपचार. दररोज रात्री 11

0: रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: हर रोज रात 10 बजे सुनिए छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: दररोज रात्री 11 ते 11:30 या वेळेत जरूर ऐका जुन्या सुमधुर हिंदी चित्रपट गीतांचा आपला आवडता कार्यक्रम डॉक्टर परीक्षित फेगडे बेला के फूल। प्रायोजक डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक, सांधेदुखी आणि गुडघेदुखीवर रामबाण उपचार। दररोज रात्री 11 ते 11:30 या वेळेत जरूर ऐका जुन्या सुमधुर हिंदी चित्रपट गीतांचा आपला आवडता कार्यक्रम बेला के फूल। आणि या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक आहेत जितेंद्र घोडके सराफ,
3: कल दोपहर 3 बजे सुनिए सखी सहेली। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक है देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।
4: आणि आता कार्यक्रमात

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: चे सहप्रायोजक आहेत जितेंद्र घोडके सराफ,
1: कल दोपहर 3 बजे सुनिए सखी सहेली। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक है देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.
3: दररोज सकाळी 8 ते 8:30 या वेळेत जरूर ऐका लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड प्रस्तुत मराठी भक्ती संगीत. प्रायोजक लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, आपले विश्वासू लोकमान्य.
4: आणि लग्न बसण्याची खरेदी सणोत्सवासह फक्त स्वामिनी मध्ये बिझलाइन बिल्डिंग कुमठेकर रोड पुणे.
5: आणि डॉक्टर दूध भाते नेत्रालय, डॉक्टर दूध भाते नेत्रालय आता भव्य आणि प्रशस्त वास्तूत सिंहगड रोड पुणे इथे.
6: विकसित

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

0: 101 उमा सदन या कौटुंबिक श्रुतिका मालिकेतले कलाकार गौरी लागू, प्रसाद कुलकर्णी, रुचा नाम जोशी, माधू विराज सवाई आणि दुर्गा जी संज्ञा कुलकर्णी. मालिकेचं शीर्षक गीत प्रणिता कुलकर्णी, संगीत प्रसाद कुलकर्णी, गायक स्वर विराज सवाई आणि प्रसाद कुलकर्णी. 101 उमा सदन. मालिकेचं लेखन रुचा नाम जोशी, सादरकर्त्या गौरी लागू. 101 उमा सदन.
1: कौटुंबिक श्रुतिका 101 उमा सदन आताच आपण ऐकलीत. लेखन होतं रुचा नामजोशी यांचं, तर कलाकार होते गौरी लागू, प्रसाद कुलकर्णी, रुचा नामजोशी, विराज सवाई, संज्ञा कुलकर्णी, सादरकर्त्या गौरी लागू. श्रोते हो, 2:15 होत आहेत. हिंदी समाचार राष्ट्रीय सेवा वाहिनीवरून काही क्षणातच.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी. सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी

0: नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्य विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरल में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी

0: मंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @yayarnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोतेहो, हे आहे आकाशवाणी नेटवर्क आणि आपण ऐकत आहात पुणे विविध भारती 101 FM। दुपारचे 2:30 वाजलेत। आम्ही युवा अभिनेत्री संस्कृती बालगुडे आणि तिची आई संजीवनी बालगुडे यांच्याशी गप्पा आणि गाणी यांचा भाग 6 संवादक आणि सादरकर्ते संजय भुजबळ।
4: नमस्कार श्रोतेहो, आम्ही या कार्यक्रमात आता ऐकूया युवा अभिनेत्री संस्कृती बालगुडे आणि तिची आई संजीवनी बालगुडे यांच्याशी गप्पा आणि त्यांच्या आवडीची गाणी भाग 6 आणि शेवटचा। आम्ही
5: आम्ही कलंदर अव्वल नंबर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद इस मंच के साथ आपकी और हमारी भेंट हुई है।
1: बिल्कुल। और इस भेंट में ये देख रही हूँ कि निजात, इतनी भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो में एसी की ठंडक में, वो अलग ही बता रहा है कि आप भीषण गर्मी से हाल बेहाल है सब लोग, हम सब।
2: हाँ, सभी का इन दिनों तो कह सकते कि देश के हर हिस्से में जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है तो हर कोई त्रस्त है और वो यही देखता रहता है कि कहीं कोई छांव मिल जाए।
1: और ऐसे तो छांव सड़क पे, खुली सड़क पे तो छांव ढूंढते रहते हैं, तो एक जरा सी छाया मिलती है, पेड़ जब पत्तियां हिलती हैं तो एक जरा सी हवा चलती है, ठंडी हवा जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन गानों की छांव ऐसे सुकून दे है कि ठंडी हवा के जब गाने सुनते हैं तो सचमुच हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन ठंडी हवा की छांव में चलने से पहले जरा आज के विषय पर हम गौर फरमा लें।
2: हाँ, तो जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी तक उन्होंने फेसबुक की पोस्ट नहीं देखी है, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पता लग जाएगी किन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आपने जब ठंडी हवा की बात करी ना, तो भाई उसके लिए पर्यावरण का दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण हो। तो एक ऐसी महिला जिसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी आज हम बात करेंगे और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये है तुलसी गौड़ा, इनकी आज बात होगी।
1: पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में बताएंगे। और गर्मी से निजात पाने के लिए कपड़ों का ध्यान रख रखाव भी जरूरी है कि हम कौन सी पोशाक पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार बहुत सिंथेटिक कपड़ा या सिल्क पहन के धूप में, तपती दोपहरिया में, या बहुत डार्क कलर पहन के निकल जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास और ज्यादा होता है, बल्कि पसीना ज्यादा आता है। गर्मी में कॉटन कपड़े पहन के निकले तो ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी।
2: लेकिन और आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कुछ कपड़े जिन्हें कई बार हम थोड़े ही दिन पहना, उन्हें बस यूज नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको फिर से अगर पहनने का मन करे तो उनको एक नया रूप देकर किस तरह से पहना जा सकता है। या कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात।
1: बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है, खुली सड़क पर जब निचाट धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना।
2: कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार गर्मी से बचाव में भी हो जाता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की।
1: एक और जरूरी बात है, वो कौन सी है बताइए जरा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं, तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है। और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिया जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: और हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी
2: जी।
1: और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते हैं। सुनते ही ये गाना।

0: ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो यादों का कारवा भी चलता है
1: जी।
0: और छांव तो मिलती है, सुकून मिलता ही है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की है चंचल जी कि आज पर्यावरण विद तुलसी गौड़ा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में जहाँ भीषण गर्मी है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, ऐसे में पर्यावरण की बातें करके पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की, मातृवृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी, क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
1: और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगिकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया। इसलिए जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ, जो वो काम किया करती थी एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं

0: मिली ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने तक अपनी माँ के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया और 70 साल की उम्र पूरा होने तक यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था।
1: और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया।
0: तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की, और इसमें एक सामुदायिक अभयारण्य, 5 बाघ अभयारण्य, 15 संरक्षण अभयारण्य और करीब 30 वन्य अभयारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रहीं, क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मात्र वृक्ष हैं उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मात्र वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी।
1: और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये जरूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उनके समुदाय की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल भी करती है।
0: ऐसा अनुमान ममता जी लगाया जाता है कि तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में अकेले ही करीब 1 लाख के करीब उन्होंने पेड़ लगाए हैं, और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में तुलसी गौड़ा को वहां का गौरव भी लोग मानते हैं। उन्हें जंगल और औषधीय पौधों का अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने जो भी पौधे लगाए उनमें बहुत ज़्यादा जो पौधे थे वो औषधीय पौधे भी थे, और इनका उपयोग उस वक्त बहुत ज़्यादा किया गया जब गाँव के लोग बीमार पड़ जाया करते थे।
1: हालांकि एक समय जब वो कर्नाटक वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा।
0: तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया, और जब कुछ कहा सुनी के बाद कई ऐसे भी मामले होते हैं कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी वो आगे आई और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी, और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। अब उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं, और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ, जो कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है, लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज्यादा महत्व देती है।
1: और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे, इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया गया, और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया, जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।
0: और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन, जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय वो इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई, और तुलसी गौड़ा की विरासत हम सबके लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने हमें समझाया

0: कि कोई भी पहल पर्यावरण में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें प्रकृति की देखभाल और जुड़ाव के महत्वपूर्ण संस्कृति को विकसित करने का संदेश देता है।
1: और जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो ये बात अपने आप से कह सकें।

0: तो भाई ये बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, भरत व्यास की ये रचना थी, सतीश भाटिया का संगीत था।
1: अच्छा ममता जी, इससे पिछली बार जब हम मिले थे विविध भारती में और हम जब गेट पर ही थे तब उल्टी दिशा में आप जा रही थी बड़ी तेजी से।
0: अरे बड़े ध्यान से आप देखती हैं।
1: क्या होता है ना, सीधी दिशा में तो सभी चल रहे थे, अचानक आपको जब उल्टी दिशा में जाते देखा मैंने, तो मैं समझ नहीं पाई कि कारण क्या है। तो आज जब मुलाकात हुई तो लगा यही पूछ लूं।
0: ठीक, सवाल बिल्कुल सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बाएं तरफ चलो
1: जी
0: और एकदम किनारे किनारे चलो।
1: हाँ।
0: जो

0: सड़क के किनारे जो बना रहता है, जिसको हम पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए बना रहता है,
1: हाँ
0: वहां चलना चाहिए, ये सिखाया जाता है हमें।
1: इसीलिए सिखाया जाता है ना कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी भी तो है।
0: और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कुछ लोग तो बहुत सदाशयता के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो नियम उस दिन पालन मैंने नहीं किया, लेकिन आपने पूछा कि क्यों चल रही थी, उसकी एक वजह है। देखो, सड़क के किनारे चलने के लिए जो कई बार छायादार वृक्ष लगे होते हैं, बाईं तरफ हम चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ख़ास तौर से हाईवे जो होते हैं वहाँ पर तो आपके लिए पैदल चलने के लिए कुछ बना नहीं होता है।
1: जी।
0: और हाईवे ना हो तो भी कुछ सड़कों पर जहाँ पर किनारे चलने की जगह ना हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उल्टा चलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाईं तरफ चल रहे हैं, पीछे से बाइकर्स इतनी तेज़ रफ्तार में आते हैं कि उन बाइकर्स की आवाज़ से अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते गिरते बचते हैं, और ऐसे हादसे हमने आंखों के सामने देखे। तो मैं क्या करती हूँ, जब जहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं बनी रहती तो मैं उल्टा चलती हूँ, क्योंकि सामने से वाहन आता हुआ दिखाई देता है तो हम सतर्क रहते हैं पहले से।
1: और आपने जब बात की ना कि कई बार लोग हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, तो हम नियमों की बात तो करते हैं, उसमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज्यादा तेज आवाज की हमें जरूरत है। हम उतना ही, कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते ना कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज आवाज वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना। ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बदहाल है, बेहाल है, और इनसे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये बातें हम करते तो हैं, ये सिर्फ नारा नहीं लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। यातायात के जो भी नियम हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़कों पर वाहन और पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका संतुलन वो बना रहे, कोई दुर्घटना ना हो, जान माल की हानि ना हो।
0: बिल्कुल। और कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि लेन का पालन करें। और हमने तो भाई देखा कि तुरंत यहाँ मुंबई की सड़कों पर लेन अगर गलत तरीके से चेंज किया तो चालान हो जाता है, और आजकल तो ऑटोमेटिक चलाना आपको पता भी नहीं चलता, आपके जब पैसे कटते हैं तो पता चलता है।
1: जब खासतौर पर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ आपकी गति के हिसाब से लेन बनाई हुई होती है, तो जिस गति में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, उसी लेन में आपको रहना जरूरी है ताकि अगल बगल जो भी लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत।
0: मुंबई की बात करें तो मुंबई में खास तौर से जो मुंबई का शहरी इलाका जिसको मुंबई महानगर कहा जाता है, जैसे कि जहां पर विविध भारती का स्टूडियो है, ये तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इन इलाकों में लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि आप बाईं तरफ ही चले, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है। हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है।
1: कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस मैन ना हो तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि
0: अपनी सुरक्षा
1: के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि तेज गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कभी ना करें।
0: चंचल जी,
1: जी
0: यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मोबाइल फोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा

0: आसान है, लेकिन कोई मानता नहीं है।
1: जी
0: अब तो ईयर प्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं। अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है, तो स्पीकर पे बात करते हो, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है।
1: बिल्कुल
0: और जो मोबाइल बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयर प्लग लगा के लोग आराम से बात करते हुए जाते हैं। जब ये ईयर प्लग नया नया आया था बाजार में, तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप
1: जी
0: से। तो बाद में पता चला कि ये सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो। ये बहुत खतरनाक होता है। कहाँ पर आपका आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए,
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: कहा
0: बहुत
1: आपने।
0: खतरनाक होता है।
1: इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग ज़रूरी होता है। कई बार हमें लेफ्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियां हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं, तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही, आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया, तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ खतरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ेबरा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो ज़ेबरा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानीपूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हों और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना ज़रूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर
0: वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह।
1: सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यातायात के जो भी नियम हैं उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं। आवागमन तेज हो सकता है इससे। अगर इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना, सज़ा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे जब, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात, उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगेंगे,
0: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को
1: तो उनको
0: वाहन देना ही नीचे कानूनन अपराध है। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम है। बच्चों को सड़क पार करने का तरीका भी सिखाएं, जो छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते नए नए उनके भी जो रूल हैं बताएं कि हेलमेट लगाएं। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बारे में अपने जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, सुनते हैं।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: अंतराल में जो गाना बज रहा था बाबूजी धीरे चलना, तो मुझे याद आई हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में। हमारे साथी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज्यादा अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी, एक गाना सुन लिया जाए।
0: गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा है इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा,
1: कैमरा देख रहा है,
0: कैमरा देख रहा है, जब कैमरा नहीं था तो आपका आपका अपना आपकी नैतिकता देख रही है ना। अगर आप खुद को बताओ कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर।
1: आजकल हर सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर एक तीसरी आंख यानी कि कैमरा लगा दिया गया है, तो आप ये ना सोचे कि कोई हवलदार नहीं है तो आपको किसी ने देखा नहीं है।
0: अब गाना सुनते हैं एक।

0: ये पतिता फिल्म का गाना था और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे श्रोता बहुत सजग है भाई, बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियाँ भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है।
1: और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियाँ भी कई बार फैशन में, वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनते हैं वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहनना है। और ममता जी, आपने जब उल्टा चलने की बात बताई थी ना, इसी बात पर हमारी एक सखी ने कुछ कमेंट लिखा है। वो कहती हैं कि ममता जी आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चलना कई बार ज्यादा सुरक्षित है। कुछ साल अब अपनी अपनी घटना बता रही हैं। कुछ साल पहले पुणे में इसी तरह हम कुछ सहेलियां लौट रहे थे। एक सहेली बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ।
0: लेकिन बस सजग रहना बहुत जरूरी है कि आप, पता चला मोबाइल देखते देखते चल रहे हो, सामने से कोई वाहन चला आ रहा तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते हैं। आजकल ये जो मोबाइल फ़ोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई है।
1: हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फ़ोन आप कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, तो हम कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जींस को नया डिजाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: तो चंचल जी, इस गाने से पहले आप पुराने कपड़ों को नया लुक किस तरह से देना चाहिए बता रहे थे, और हमारी सखियों की बहुत सारी टिप्पणियां भी आपने सिखाई हमें, तो याद है बचपन में कि पुराने कपड़ों की बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी, यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ बना दिया जाता था, और कुशन कवर तो बताया ही हमारी सखियों ने, और हमें याद है कि हमारी माँ पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीजें और डिजाइनदार बनाती थी, सिलाई मशीन होती थी घर में, सिलाई मशीन का कवर कपड़ों से तैयार किया जाता था, और पैरपोश उस समय बाजार में बहुत कम मिलता था हमें तो जहाँ तक याद है, तो कपड़ों से ही तैयार किया जाता था, और बहुत सारे तकिए के कवर सुंदर डिजाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर बहुत सुंदर लगता था।
1: कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।
0: और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था टेबल पर, एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था, मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था, और वो बाकायदा डिजाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए।
1: और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जींस खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हल्की सी खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं पहनेंगे, मन में एक खटास सी आ जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीज़ें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना कि पैच वर्क लगा कर, कुछ कढ़ाई बना कर, या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं। और अगर वो दाग वहाँ पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, खोते ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नहीं

0: दाग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती हैं, इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते हैं।
1: वैसे जो डिजाइनदार दुपट्टे होते हैं
0: जी
1: चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी, है ना,
0: और
1: तो वो बहुत सुंदर बनता है।
0: बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज़ साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं, सभी पसंदीदा हैं, तो उनका
1: ये आप अपने दिल की बात कर रही हैं ना
0: उनका इस्तेमाल
1: ये हम
0: करने
1: सबके
0: के
1: दिल
0: लिए
1: की बात है।
0: हम कई बार गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं, तो और आजकल आप जाइए डिज़ाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके ये रीयूज़ बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतनी तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन कवर बनने लगे हैं, तो ये जो रीयूज है ना ये बहुत ज्यादा होता
1: और
0: है।
1: और बात आपने साड़ियों की निकाली है, तो साड़ियां तो ऐसे ललचाती हैं, तो हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे, और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं कीड़े भी लग जाते हैं, खासतौर से सिल्क की साड़ियों में। तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिजाइनदार जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों, वेस्टर्न गाउन, जिसे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे पार्टी में और वो जब खरीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिजाइनदार आप वेस्टर्न गाउन
0: बिल्कुल,
1: बनवा
0: उनकी
1: सकते हैं।
0: कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो खराब हिस्सा है वो कलियों
1: अनारकली
0: में कट
1: जिसको
0: जाता है,
1: कहते
0: तो
1: हैं।
0: छोटी छोटी कलियां कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं, या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज हमें दिए हैं, तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं। टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है, जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है, शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है, डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है, पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिजाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है, शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं, इस तरह से लैच और पैचवर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं, और आगे इन्होंने संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बन जाता है।
1: छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे डिजाइनदार कपड़े बन सकते हैं, फ्रॉक है, टी शर्ट है, ये बन सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: कपड़ों से और क्या क्या बन सकता है चंचल?
1: पुराने जो स्वेटर होते हैं ना उनका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं, उनसे टोपी बन सकती है, और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं।
0: लेकिन ऊन कट जाता है बीच से, फिर उसको कैसे करें?
1: अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
0: अच्छा,
1: एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी और वहाँ ठंड बहुत होती है, तो पूरा तैयार हो गई, हेयरस्टाइल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में लगने लगा कि भाई ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे तो सारा हेयरस्टाइल ख़राब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयरस्टाइल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से। और फिर वहां पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहां पर मेरी माताजी ने एक जिप लगा दी और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए, और वहां पट्टी लग जाती है तो उसको मोड़ दिया जाता है तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे खोलकर पहनने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बटन लगाएंगे तो शायद वो ऊन के धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए जिप लगाना ज्यादा सुरक्षित।
0: और एक बड़े काम की चीज है कि पुराने कपड़ों को, खासतौर से जो छींटदार शर्टें होती है कॉटन की मोटी, तो उसके सुंदर डिजाइनदार बैग या झोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्लास्टिक की थैलियाँ लेनी जानी है, तो झोले तो बहुत सारे घर में चाहिए होते हैं, तो वो डिजाइनदार बैग बन सकता
1: है। और इस तरह से ममता जी हम प्लास्टिक के उपयोग को रोक भी सकते हैं। आजकल ज्यादातर कागज के थैलियों में सामान आने लगा है, तो कई बार लटका कर आपको बहुत देर तक कोई भारी वजनदार सामान लाना है तो वो कागज की थैलियां भी उस वजन को झेल नहीं पाती है, इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ कपड़े का बना हुआ कोई थैला लेकर जाएं।
0: और थैले से जब सब्जियां लेकर आते हैं ना तो कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। उसकी साफ सफाई देख रेख कैसे करते हैं जरा बताइए।
1: हाँ भाई, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे रसोई घर में होता है, जो कि होता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए और ताजा रखने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर रख दी जो खाने को ताजा रखने की बजाय बदबूदार बना दे, या कई चीजें बहुत दिन तक रखी हुई हैं तो भी वो एक सड़न या बदबू पैदा करने लगती हैं, तो इससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई।
0: कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी जो
1: ये जो आपने
0: स्मेल होती है चली।
1: ये टिप भी हमारे साथियों ने हम तक लिखकर पहुंचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुंच नहीं सकते हैं तो एक खुले एक बर्तन में, कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो सफ़ेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोलकर एक मिश्रण तैयार कीजिए और इससे पोछा लगा दीजिए। और कॉफ़ी के जो दाने हैं उनको भी रखा जा सकता है। ये भी हमारे एक श्रोता की लिखी हुई टिप्पणी है। और नींबू की तो आपने बताई दी है। इसके बाद जो सक्रिय कोयला जिसे एक्टिव चारकोल कहते हैं वो भी गंध सोखने में शक्तिशाली होता है, तो उसे भी रखकर आप फ्रिज
0: नमी सोख लेता है। और अब चलते चलते सुनते हैं ये गाना, फिल्म है भरोसा, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: भरोसा फिल्म का ये सुरीला सा गीत था जी। तो चाह रहा है कि पूरा गाना सुनवाए, लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो अब वक्त नहीं कि पूरा गाना, कुछ एक अंतरा बचा रह गया, फिर कभी। अब बस अब श्रोताओं से इजाज़त लेने की बारी है, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारी रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं?
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं, जो वो अपना मन चाहेगी, जो अपने पत्रों पे आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को
0: जी
1: 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, एक ना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू आने वाला है तो ये हेलो फरमाइश एक ही दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार।
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी,
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ए हसीनो।
0: सुनो ए हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है। जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथ बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, खेतीबाड़ी करता हूँ। और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है।
0: जी
1: भी है।
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं? देखिए आपके बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें।
0: ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास

0: का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: रामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
0: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
0: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
1: ये आरबीआई के हम सीएससी रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आज कल।
0: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है?
1: जी
0: वाह। अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: चलिए, ये बताइए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी हमको सुनना है अखियों की झरोखों से फिल्म के हेमलता की आवाज़।
0: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर अकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैडम जी,
0: रामेश्वर जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती का काम निपट गया है।
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: अषाढ़ आएगा ना मैडम जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की।
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप?
1: मैडम जी ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ नहीं।
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीतमाला था, अब सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है, और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले, या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है। तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम
0: जी, तो ये तो था यूं ही, ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमको बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो
2: एक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी
3: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मदत जात अरे ए, ए, ए, ए चतुर नार करके सिंगार।
4: हेलो फरमाइश।
5: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
4: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
5: किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा।
4: आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे दादाजी होंगे तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
5: जी मैम, जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का।
4: अच्छा अच्छा,
5: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गांव में, अब किसान ही है।
4: इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
5: हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
4: क्या बात है, तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं।
5: जी जी मैम।
4: तो बताइए विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
5: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं मैम। आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, है जो हेलो फरमाइश है, साथी सहेली है।
4: पसंद आता है आपको कार्यक्रम?
5: जी जी मैम आता है।
4: क्या बात है, चलिए ये बताइए राजकुमार जी कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
5: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना आया परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
4: जी बिल्कुल, तो चलिए राजकुमार जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नेहा जी, मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं।
0: अच्छा।
1: मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी, 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से।
0: अच्छा,
1: मैं विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ।
0: अच्छा
1: जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं, पहले भी जो प्रोग्राम आते थे आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती।
0: क्या बात है, तो इन बदलावों के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव?
1: हाँ बहुत अच्छा है, वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है।
0: जी तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर बात बदलती जाती है।
1: बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है।
0: जी बिल्कुल, स्वीकार करना जरूरी है।
1: हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल लगना बोले तो बिल्कुल एक चांद को छू लेने जैसी कामयाबी है। मैं भी इतने सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है, जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत, धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज अलका याग्निक का और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: अच्छा, क्या आप गाते भी हैं?
1: नहीं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं।
0: तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: घर इमारत बंगला झोपड़ी लहान मोठे समान्य व खास, सुटे न कोणी लक्ष द्या आपली जनगणना आपला विकास।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। उदयपुर में जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं। ये जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सुपर्या सर्कल है, सेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से।
0: यानी कि ठंड के दिनों में?
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिल्कुल। पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम।
0: जी ये बिल्कुल सही बात है,
1: और हमको विविध भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा।

0: अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
0: जी और गीत
1: के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
0: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।
1: और मैडम इस गाने को हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति वारी भी सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आपको और हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना है या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ नेहा जी।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर मैंने धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडो घूम चुकी हूँ। जी जी जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी जब हम मांडव महेश्वर मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे। जी तस्लीम जी ये बताइए आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं?
1: जी कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ।
0: तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
1: जी और ये अपना SMS के बहाने विविध के तराने तो

0: पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
1: ओह ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
0: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी दो दिन तीन दिन के लगभग हुए
1: जी,
0: बराबर मालूम भी नहीं है। वो ज्ञापन सुना करते थे, वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर
1: जी। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है
0: जी। नहीं मैं सुनता हूँ, शुरू सुबह 8 बजे से तो रात तक के फ्लोर में चला करती है, तो 9-10 भी बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं।
1: क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
0: 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा
1: जी। बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू न शराब हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: जाना मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओहो डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है।
1: सतीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या बात है,
1: दिल नहीं लगता तो आपको फोन लगाते हैं।
0: ओहो क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने। हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी।
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी है शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी।
0: अच्छा अच्छा जी, और क्या करते हैं आप
1: जी? मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को।
0: तंग करते हैं घर वालों को?
1: फ्री है जी।
0: अच्छा अच्छा
1: हो गया ना अब।
0: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ को गाइडिंग कर रहा हूँ।
0: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे आपसे बात करने में बहुत टाइम हो गया, तो सोचा आज विविध भारती के हेलो फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूँ और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूँ।
0: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट हैं वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
1: नहीं नहीं।

0: वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शर्मी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा जल्दे के अंदर शूट किया था जानसा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे बात करने का
1: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा ये बताइए कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
0: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है।
1: अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग लोग मिलते होंगे या फिर कुछ अनुभव आते होंगे? कोई अच्छा सा किस्सा किसी टूरिस्ट के साथ हुआ हो तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे। जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनके हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होकर वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ। उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे।
1: क्या बात है,
0: अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

0: श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कॉमरेड एजेंट, हम मंगल तारे के वासियों ने साइंस में जिस कदर तरक्की की है ब्रह्मांड के किसी प्लेनेट ने नहीं की। हमने तकरीबन हर तरक्की याफ्ता ग्रह की खोजबीन कर ली है, लेकिन जमीन ही एक ऐसा ग्रह है जिसे पिछला हुआ ग्रह समझकर हमने हमेशा नजरअंदाज किया। लेकिन आज बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हम जमीन के वासियों का भी एक स्पेसिमेन यानी नमूना मंगवाए और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। एजेंट डबल एक्स और डबल एन,
1: यस बॉस।
0: तुम्हें जमीन की दूरी का इल्म है?
1: यस बॉस।
0: कितनी देर में नमूना ला सकोगे?
1: करीब 2 घंटे में।
0: इस वक्त क्या वजह है?
1: सुबह के 10:20:15.09।
0: अब फौरन उड़न तस्करी ट्रिपल लाइन ले जाइए और मिशन पूरा कीजिए। गुड लक। याद रहे, नमूने को बेहोश करके लाना है।
1: यस बॉस। एजेंट डबल एक्स, एजेंट डबल एन रिपोर्टिंग।
0: आगे आगे। गुड गुड। नमूने को लैब 304 में ले जाओ।
1: यस बॉस।
2: एजेंट ट्रिपल जेड।
1: यस बॉस।
2: जमीन के नमूने के दिमाग का ऑक्स स्क्रीन पर लाओ।
1: जी सर।
2: तस्वीर साफ नहीं है।
1: आप ठीक कहते हैं सर।
2: एक्सरे कैमरे को बाएं कोने में जूम करो और करते जाओ।
1: जी सर।
2: ये क्या
1: है? थैला लटक रहा है और ये फर्नीचर की साइकिल है और ये किसी लड़की का फोटो है और ये कुछ एक दिल और रिश्ते किस्म के कागज हैं और ये जगह जगह फाइलें बिखरी पड़ी हैं और तस्वीर पूरी साफ न होने की वजह शायद टेंशन का धुआं है।
2: इसके दिमाग की जांच से पता चलता है कि इसकी हालत काफी खस्ता है। एजेंट ट्रिपल जेड।
1: यस बॉस।
2: दिमाग के बाद इसके दिल का ईसीजी करो और उसे भी स्क्रीन पर लाओ।
1: यस बॉस। सर, ये तो ग्राफ पर लकीर की जगह कुछ लिखा हुआ आ रहा है।
2: इसे फौरन कंप्यूटराइज करके बताओ क्या लिखा हुआ आ रहा है।
1: यस बॉस। सर, ये लिखा है राशन 40 रुपए 31 पैसे, दूध 18 रुपए 35 पैसे, बनिए का उधार 203 रुपए 48 पैसे, बच्चों की फीस 42 रुपए 9 पैसे, जेब खर्च। सर, ये तो घर के बजट का हिसाब जान पड़ता है।
0: एजेंट डबल एक्स डबल एन।
1: यस बॉस।
0: आप इसे जमीन के कौन से हिस्से से लाए हैं?
1: सर, हम इसे जमीन के पूरे हिस्से के मुल्क हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से लाए हैं।
0: ये नमूना उस वक्त क्या कर रहा था?
3: अपने दफ्तर के बाहर लॉन में बैठा मूंगफलियां खा रहा था।
0: क्या दफ्तर के टाइम में? और कोई इंफॉर्मेशन?
1: इसकी जेब में जो कुछ निकला है उसमें टूटी हुई कंघी, एक बीड़ी का बंडल, एक लॉटरी का टिकट, एक नावल और 1.35 रुपए है।
3: और निकला है एक आइडेंटिटी कार्ड जिससे पता चलता है इसका नाम रामलाल है, ये अपने दफ्तर में क्लर्क है।
0: आपको इसे लाते हुए किसी ने

0: तो नहीं।
1: नो सर, हमने जमीन पर पहुंचने के बाद इनविजिबल यानी अदृश्य होने वाली गोली खा ली थी
2: और इसे बेहोश करने के बाद एक गोली इसे भी खिला ली थी।
0: एजेंट पिल्जेट।
3: यस बॉस।
0: चूंकि हमें इसे मिशन के लिए पूरी रफ्तारी से काम लेना है, इसलिए इस बात को चेक करने के लिए आप नमूने के सबकॉन्शियस माइंड को बेदार कीजिए और कंप्यूटर की मदद से इसे साउंड एक्सरे डिवाइस पर लाइए और फिर मेरा सवाल इस तक पहुंचाइए।
3: यस सर।
0: मिस्टर रामलाल, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस वक्त कहां हो, या क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या बीती?
4: मुझे कुछ मालूम नहीं। आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं अपने दफ्तर के बाहर लॉन में बैठा लंच कर रहा था। लंच के बाद जो ही मैंने नावल पढ़ना शुरू किया, अचानक मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया।
0: एजेंट ट्रिपल जेड।
3: यस बॉस।
0: आप इसके सबकॉन्शियस माइंड को जगाए रखिए और इसे अनुवाद टेप पर लाकर मुझे इसके घर की हालत की एक झलक दिखाइए।
4: मैं पूछता हूँ मेरी ऐनक कहाँ है?
5: आपकी ऐनक? लो, ये आपकी आंखों पर क्या है जी?
4: तो फिर मुझे पेन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं मिल रहा
5: पेन? आए हाय, तो ये आपके हाथ में क्या है?
4: ओ, तो इसमें सामने जवाब देने की क्या बात है? लो, अब कमीज का बटन ही टूटा हुआ है। क्या घर में बटन भी नहीं था?
5: बटन तो क्या, घर में साबुन भी नहीं है। और ये कमीज आपको 3 दिन चलानी होगी।
4: हाँ। और बनियान 6 दिन। मैं कहता हूँ मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। ये जिंदगी है या नरक? कमामत नहीं और बड़ा परिवार, सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह, कभी दूध की लाइन में तो कभी राशन की लाइन में तो कभी बस की लाइन में तो कभी बनिए की लाइन में, ऊपर से तुम्हारी तू तू मैं, इससे तो मैं दफ्तर में ही अच्छा।
0: मुझे एक बार फिर इसके माइंड से जोड़िए और मेरे कुछ और सवालात इस तक पहुंचाइए। मैं जानना चाहता हूं कि जमीन के इन लोगों की इस हालत की वजूहात क्या है। मिस्टर रामलाल, क्या आपके घर का माहौल हमेशा से ही ऐसा है?
4: जी नहीं।
0: तो क्या कभी आपको अपनी पत्नी से मोहब्बत थी?
4: बहुत ज्यादा। शादी के बाद कई साल तक
0: इसका कोई सबूत?
4: 6 अदद बच्चे।
0: 6 बच्चे? My goodness। मगर अब मोहब्बत में कमी का कारण?
4: शादी के वक्त मेरी पत्नी एक हूर थी, मगर अब शक्ल लंगूर है।
0: इसकी वजह?
4: वही 6 अदद बच्चे।
0: समझा। प्रिमिटिव, बहुत पिछड़े हुए। एजेंट ट्रिपल जेड।
3: यस बॉस।
0: जमीन के नमूने के बारे में हमारी खोज और जानकारी कई पहलुओं से मायूस कुन होने के बावजूद दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ कुछ इसके दफ्तर के बारे में मालूम करूँ। मुझे एक बार फिर इसे करेक्ट कीजिए।
3: यस बॉस।
0: मिस्टर रामलाल, आपके दफ्तर का आम सिस्टम क्या है?
4: हमारा सिस्टम वही है जो मैं चाहता हूँ।
0: यानी
4: अपनी मर्जी और अपने वक्त से आता हूँ और अपनी मर्जी और अपने वक्त से जाता हूँ। चाहूँ तो फाइल 2 मिनट में निपटा दूँ और चाहूँ तो फाइल 2 दिन में भी ना निपटाऊँ और चाहूँ तो फाइल सिरे से ही गायब कर दूँ। काम करवाने वाले इंतजार करते हैं तो करते रहे, मैं अपने सिस्टम के मुताबिक बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए सिगरेट बीड़ी जरूर पीता हूँ। सच तो ये है कि सारा दफ्तर मेरे गिर्द घूमता है। जब तक कोई कागज मेरे हाथ से होकर ना निकले साफ तो कुछ नहीं कर सकता।
0: हैरत है इस कदर लूज सिस्टम। और एक हमारा सिस्टम है कि हर शख्स एक मशीन की तरह है, एक एक मिनट और एक एक सेकंड का हिसाब है। हमारे डिसिप्लिन सिस्टम और रूटीन की पाबंदी का ये आलम है कि कोई शख्स सदियों तक इसमें तब्दीली या गलती नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी ड्यूटी को ही जिंदगी मानता है और ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा हमेशा हमेशा।
3: हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं सर।

0: शेष दस
1: ये नमूना जो अपने बॉस के बारे में गोलमाल बात कर गया, जरा उस रात से पर्दा हटाओ।
0: शेष दस रामलाल
2: सर,
0: तुम बिल्कुल ही डल हो। मैंने तुम्हें सर्किट हाउस भेजा था, मगर तुम नामुकम्मल फाइल लेकर चले आए। मैंने तुम्हें मिस्टर पांडे से सख्ती से निपटने के लिए कहा था, मगर तुम उसकी बातों में आ गए। मैंने तुम्हें इंक्वायरी की फुल रिपोर्ट देने को कहा था, मगर तुमने कुछ नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि तुम जिंदगी में कभी कुछ काम सही या मुकम्मल करोगे भी कि नहीं।
2: मैं
0: पूछता हूँ, तुम्हारा कोई अखलाक भी है? मिस्टर पांडे ने तुम्हें चाय पिलाकर अपना मतलब निकाल लिया। हैरत की बात है कि फकत एक कप चाय के लिए तुम अपना जमीन बेचकर चले आए।
2: जी
0: वो क्या?
2: जी वो चाय के साथ पेस्ट्री बिस्कुट भी थे।
0: ओह माय गॉड,
1: इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। एजेंट ट्रिपल जेड,
0: यस बॉस।
1: क्यों ना कोई दिलचस्प पहलू देखा जाए। हाँ, कोई दफ्तर की ही एक झलक।
0: ओके बॉस।
2: रोजी, आखिर तुमने मुझे लिफ्ट दे ही दी। आखिर मेरी 3 साल की तपस्या काम कर ही गई।
3: रेली,
2: सच पूछो तो मैं बाकायदगी से दफ्तर आता ही तुम्हारे लिए हूँ। सामने बैठे हुए जब तुम पतली पतली उंगलियों से टाइपराइटर पर बिजली की तरह टाइप करती हो, तो मेरा सुख चैन उड़ जाता है। मुझे लगता है तुम टाइप नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक गिटार पर फिल्मी धुन बजा रही हो।
3: ओह गॉड,
2: काले हो तो क्या हुआ, दिलवाले हो।
3: मिस्टर रामलाल, मिस्टर रामलाल, तुम कुछ ज्यादा ही तड़प रहे हो।
2: हाय रोजी।
3: रामलाल, काश तुम्हारी मालिया हालत कुछ अच्छी होती तो रोमांस में कुछ मजा भी आता। अभी तक तो हमारी भेंट पैकोरास और कैंटीन की चाय से आगे नहीं बढ़ सकती।
2: तुम ठीक कहती हो रोजी, मुझे तुम्हारे जैसी फैशनेबल लड़की से रोमांस में जान डालने के लिए कुछ और मेहनत करनी होगी।
3: ऑफ कोर्स।
2: ओवर टाइम तो हमारी ब्रांच में बंद हो गया है और डीए और टीए भी बढ़ने का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब मैं हर फाइल पर वो नोट।
3: ओ मिस्टर रामलाल, रामलाल, तुम कैसा बातें करते हो। अब मैं बहुत बोर हो गई, अब मुझे जरा जल्दी भी जाना।
2: क्या?
3: कोई मेरा वेट भी कर रहा होगा। ओके, फिर मिलेंगे। बाय।
1: इंटरेस्टिंग, ये फ्लैशबैक भी खूब था।
0: हे सुप्रीम बॉस, ये स्पेसिमेन, मेरा मतलब है नमूना, होश में आ रहा है।
2: मैं कहाँ हूँ, आप लोग कौन हैं?
1: तुम इस वक्त मंगल ग्रह पर हो मिस्टर रामलाल।
2: मंगल ग्रह पर? क्या मेरी ट्रांसफर हो गई है?
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
2: तो जोशी राम भरोसे ठीक ही कहता था कि मुझ पर मंगल सवार है।
1: मिस्टर रामलाल, इस वक्त मंगल तुम पर सवार नहीं, तुम मंगल पर सवार हो।
2: बाई दीवे, क्या इस लंबे सफर के लिए कोई टीए मिलने की संभावना है?
1: नो
2: नो
1: एजेंट ट्रिपल जेड, मेमोरी मशीन में इसका ब्रेन वॉश कर दो और थोड़ी देर के लिए इसे मंगल के जंगल में छोड़ दो।
0: यस बॉस। गजब हो गया बॉस, गजब हो गया। सारा स्टाफ लूज हो गया है, कोई कैंटीन में चाय पी रहा है और कोई सिगरेट सुलगाए रिलैक्स कर रहा है, कोई तो ओवर टाइम मांग रहा है और कुछ ने तो पेन डाउन स्टाफ की धमकी दी है, और वो जमीन का नमूना उनके साथ बैठा उन्हें फलमूंगिया खिला रहा है। सर सर, क्या मैं भी थोड़ी देर के लिए नॉवेल पढ़ सकता हूँ?
1: मैं समझ गया, ये सब जमीनी जरासीम का असर है। ये नमूना यहाँ अपने कीटाणु और बैक्टीरिया छोड़ रहा है, इसे पानी से रवाना करो, फौरन वापस जमीन पर भेजो, वरना हम लोगों का भी वही हाल होगा जो जमीन के लोगों का है।
0: मगर बॉस, इसे छोड़ने कौन जाएगा? स्टाफ तो कंट्रोल से बाहर हो गया है।
1: इसे रिमोट कंट्रोल रॉकेट में रवाना कर दो।

0: आदमी रहतिया में और फौरन एंटी इमोशन गैस के गोले छोड़कर इस स्टाफ का ब्रेन वॉश कर दो। ये मंगल ग्रह है।
1: ये सर।
0: यहाँ एक डिसिप्लिन है।
1: ये सर, ये सर।
0: एक रूटीन है।
1: ये सर।
0: एक सिस्टम है।
1: ये सर।
0: और वो नॉवेल जरा मुझे दे दे जाओ
1: जी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म जवान से, इसे गाया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। गीत कुमार का है, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी को सुनिए। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, संगीत प्रीतम का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

अभी आपने गदर टू का गाना सुना, गीत सईद कादरी का था, संगीत मिथुन का। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में कबीर सिंह फिल्म का गाना, गीत इशात कामिल ने लिखा है, संगीत सचेत परंपरा का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
4: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
4: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ

0: अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और

0: रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत

कोल्लम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों से। फिल्म का नाम है जौहर महमूद इन गोवा। गीत कमर चलालाबादी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में जब जब फूल खिले फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घर गणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में मन की आंखें फिल्म का गाना सुनिए। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने देवता फिल्म का गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत गुलजार का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में इशारा फिल्म का गाना, गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसके कुछ देशभक्ति गीत हमारे जहन में हर वक्त गूंजते हैं।

जैसा कि हमने आपसे कहा, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। वो गीतकार रहे, संगीतकार रहे, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ फिल्मों की कोरियोग्राफी भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1923 में अंबाला शहर में। अंबाला शहर में थे एक जेल सुपरिंटेंडेंट, जिनके घर 13 जून 1923 को एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर प्रेम धवन के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम धवन के पिता जेल सुपरिंटेंडेंट थे और कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो जाया करता था, इसलिए प्रेम का बचपन कई शहरों में बीता और शहर शहर भटकते हुए परिवार का कारवां पहुंचा लाहौर। तब तक प्रेम धवन कॉलेज जाने की उम्र में पहुंच चुके थे। मशहूर लाहौर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहाँ उनके सहपाठी थे इंद्र कुमार गुजराल और साहिर लुधियानवी। आई के गुजराल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और साहिर लुधियानवी एक जाने माने गीतकार। ऐसे जागरूक साथियों का साथ मिला और प्रेम धवन का रुझान युवा राजनीति में हो गया। उन्होंने उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जुट गए। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई के लिए चेतना जगाने का काम नौजवान करते थे। प्रेम धवन पंजाब में इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के बैनर तले प्रेम धवन अपने साथियों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाते नाटक और गीत संगीत के जरिए आजादी के लिए चेतना जगाते, लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देते और इस तरह एक दिन भारत आजाद हो गया।

लेकिन धवन की दिलचस्पी इप्टा के हर पहलू में थी, संगीत में, गीत में, यहाँ तक कि नृत्य में भी। उन्होंने पंडित रविशंकर से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन दिनों में वे पंजाबी में गीत गाया करते थे। यही वो दौर था जब रविशंकर के भाई मशहूर नर्तक उदय

शंकर के साथ ही शांति वर्धन से प्रेम धवन ने शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली। उन दिनों में वो डांस ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। आगे चलकर प्रेम धवन मुंबई आ गए। उन दिनों के मशहूर संगीतकार खुर्शीद अनवर ने प्रेम धवन को अपना सहायक बना लिया। साल 1946 में प्रेम धवन की शुरुआत हुई बतौर गीतकार फिल्म पगडंडी के जरिए। सन 1948 में प्रेम धवन ने खेमचंद प्रकाश के लिए मशहूर फिल्म जिद्दी के गाने लिखे। आपको बता दें, जिद्दी वही फिल्म है जिसमें किशोर कुमार ने अपना पहला पार्श्व गीत गाया। हालांकि वो गाना जज्बी ने लिखा था, मरने की दुआएं क्यों मांगू, लेकिन इसी फिल्म में प्रेम धवन का लिखा लता मंगेशकर का गाया राग छाया नट पर आधारित ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ।

सलील चौधरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम धवन ने। सन 1955 में आई फिल्म तांगे वाली और इसका ये तांगा गीत।

सनील चौधरी के लिए प्रेम धवन ने फिल्म आवाज के गाने भी लिखे। अब बात करते हैं प्रेम धवन और हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहद वरिष्ठ संगीतकार अनिल बिस्वास की जोड़ी की। सन 1951 फिल्म तराना, तलत महमूद का ये गाना।

सन 1953 में अनिल बिस्वास ने कई रागों पर आधारित एक गाना बनाया जो रागावली कहलाता है। फिल्म हमदर्द का ये गीत मन्ना डे ने गाया। इसके बोल प्रेम धवन के थे।

करीम धवन और रवि ने हिंदी फिल्म संगीत जगत के कुछ बेमिसाल गाने दिए हैं। रवि की पहली कामयाब फिल्म 10 लाख का ये गाना।

प्रेम धवन और चित्रगुप्त की जोड़ी ने भी कुछ नायाब गाने दिए हैं। फिल्म गेस्ट हाउस का ये गाना आपके दिल को थिरका देगा।

धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू

0: फिल्म शहीद के बाद प्रेम धवन ने पवित्र पापी फिल्म में संगीत दिया। इस फिल्म के ज्यादातर गाने किशोर कुमार की आवाज में थे।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

प्रेम धवन की संगीत निर्देशन वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन प्रेम धवन का ही था।

इसके अलावा प्रेम धवन ने आरजू, धूल का फूल, वक्त और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन किया। जब जब मौका लगता प्रेम धवन फौजियों के पास जरूर जाते। जब अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने अजंता आर्ट्स के जरिए फिल्मी सितारों के एक ट्रूप को फौजियों के पास पहुंचाया और उनके लिए कुछ कार्यक्रम किए, तब लद्दाख और नाथुला की यात्रा में प्रेम धवन उनके साथ थे। अपने बैनर त्रिवेणी पिक्चर्स के जरिए प्रेम धवन ने सामाजिक मुद्दों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया। फिल्म संसार में योगदान के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। अभिनेत्री सुरैया अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था मोती महल और हुआ यूं कि स्टूडियो आते वक्त उनकी गाड़ी बिगड़ गई और वो शूटिंग के लिए बेहद लेट हो गईं। जब वो शूटिंग के लिए फ्लोर पर पहुंची और उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से वो लेट आई। उफ, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में। बस प्रेम धवन ने इस घटना को गाने में ढाल दिया और ये गाना सुरैया ने ही गाया।

0: प्रेम धवन एक बेमिसाल कलाकार, एक नायाब गीतकार, एक अद्भुत संगीतकार और प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी प्रेम धवन को हमारा नमन। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को अपना एक इकरार दे दे। मैं क्या दे पाऊंगा तुझे इस मोहब्बत के सिवा, बस तू मुझे अपना बना ले, मुझ पर ये एक एहसान कर दे।

0: मत जाओ मुझे यूं अकेला छोड़कर ए मेरी जान, मेरी हर धड़कन तुझसे ही है ये बात तू मान। अगर जाना ही पड़े तो वादा कर जल्दी लौट आएगी, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है यूं देर तक मुझे ना तड़ पाएगी।
1: इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

चांद खिड़की पे ठहरा है तेरी राहों की तरह, और रात खामोश है मेरे जज्बातों के साथ। नींद आंखों से कोसों दूर भटक रही है, और तू याद आ रही है हर एक धड़कन के साथ।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती,
2: भारत का गम एक्सपर्ट।
3: दररोज सकाळी 8 ते 8:30 या वेळेत जरूर ऐका लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड प्रस्तुत मराठी भक्ती संगीत। प्रायोजक लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपले विश्वासू लोकमान्य।
4: आणि लग्न बसण्याची खरेदी सणोत्सवासह फक्त स्वामिनी मध्ये, बिझलँड बिल्डिंग, कुंठेकर रोड, पुणे।
5: आणि डॉक्टर दूध भाते नेत्रालय, डॉक्टर दूध भाते नेत्रालय आता भव्य आणि प्रशस्त वास्तूत सिंहगड रोड पुणे इथे।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
6: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।
8: कागद पेन नाही या वेळी मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे। विवरण आणि

मेरे चेहरे की लकीरों में भी नूर सवसता है। हर गुजरा हुआ लम्हा तुझ में फिर से हंसता है। वक्त चाहे जितना भी सफर तय कर ले, पर तू आज भी दिल को पहली मोहब्बत सा लगता है।

तेरे रास्तों से हर कांटा चुन लूं मैं, तेरे हर ख्वाब को अपना बना लूं मैं, तेरी हर खुशी पे अपनी दुनिया लुटा दूं मैं, तेरे हर गम को हंसकर अपना बना लूं मैं। बस एक अर्ज है दिल से, उम्र भर साथ निभाने का वादा कर दे।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.